वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पाला।

गोरी बाबा अरे कैसी गोरी गोरी गोटी की दिखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी तो हुआ निहार छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: ओ खई के पाहन बनाओ रसबाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।
1: ओ मेम साहब हमरा संग नाचा।